0: The time for sowing has just started in India, when fertilizer application is at its peak. Farmer Yashpal mainly grows sugarcane and paddy on his plot of land.
1: अप्रैल से शुरू होकर मई जून तक धान तैयार होता है यानी लगना उसके बाद में नवंबर में ये धान कट जाता है फिर हमारा अब युद्ध के बाद में जो है अब हम जो खाद अब खरीदने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी लगाना शुरू होगा तो अभी दुकानों पे फिलहाल अब तो फिलहाल मौजूद है पर जब जैसे जैसे किसान इसे लगाएगा तब इसकी दिक्कत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है
0: India is one of the world's largest users of fertilizer at 60 million tons, behind only China. Much of its urea is produced domestically, but it also imports more urea than any other country.
2: Nearly 20 to 25% of our urea requirement, approximately 70% of the phosphorus, and almost entire quantities of potassic fertilizers, we depend on imports. And imports, particularly you know, urea or phosphate, some of the Middle East countries, and this kind of you know, supply chain disruptions happens. So it is definitely going to affect domestic prices of these inputs. So likewise, we import about 60% of our LNG requirement, and most of it comes from these Middle East countries. And you know, LNG also serves as a feedstock for urea production.
0: Gas supplies have been cut by one third. And the strain on LNG has caused local urea production to drop. Fertilizer sellers like this one in Kashipur are forced to raise their prices. Their products come from manufacturing plants in India. While the wholesale price of urea has remained flat, other types of fertilizers have gone up by about 50 to 150 rupees per bag.
3: Urea khad ka ek chota sa data deta hun. तो अप्रैल में हमने 2 से 3 गाड़ी लास्ट ईयर परचेज करी थी इस साल मुझे एक भी गाड़ी नहीं मिल पाई है एक गाड़ी मतलब 350 से 400 बैग्स तो पिछले साल से तो बहुत कम है परचेज तो बोझ हमें डालना पड़ेगा अगर हमारा मार्जिन बढ़ता तो हम मैनेज कर लेते अपने मार्जिन में से डिस्काउंट दे के बट हमारा मार्जिन ही लिमिटेड है इससे कम मार्जिन पर काम करेंगे तो हमारा काउंटर सर्वाइव नहीं कर पाएगा शट डाउन करना पड़ेगा खाद का काम हमें
1: जब हमें पीछे से कोई सामान या खाद या नहीं मिलेगा तो फिर हम अपनी फसल को उसे कम मात्रा में ही देंगे क्योंकि हमें पूर्ति करनी पड़ती है उसे हम अपनी फसल में थोड़ा कम मात्रा में करके फिर और जो लोकल हैं उनको लगा के फिर पूर्ति करते हैं कम मात्रा दी जाती है यूरिया की और डीएपी की दिक्कत आती है फसल में जो है हानि होती है यानी पैदावार में कमी आती है
0: Rabi and Zaid. Every year, India uses 40 million tons of urea. According to the government, the country had 6.2 million tons of the crop nutrient in its reserves as of March.
2: We have just harvested the Rabi crop where we didn't require much of the fertilizer. In the forthcoming Kharif season crop, if the fertilizer prices increase, and generally what we find is that fertilizer is not much responsive to this kind of changes because farmers have to apply. They will buy it even if the prices rise to sustain. So the margin, of course, who will bear that cost? It is basically the government. And when this kind of, you know, crisis happens, government again raises the subsidy for the fertilizers.
4: What government of India had done was we had bigger stocks of urea and other fertilizers than compared to even the last year. So that helped. The second is we have prioritized gas allocation for urea production. Government of India is also trying to secure urea, DAP and potash from other countries that are not affected directly by the Strait of Hormuz. And they're rerouting some of it through the Cape of Good Hope. So that increases the transport cost, but at least secures fertilizers for us.
0: India had, in the past, banned rice exports during times of shortage. For now, Delhi has not signalled at export restrictions. That's a relief, given Indian rice accounts for over 40% of world rice exports, shipping more than the next three largest suppliers combined. The shutdown of the strait, though, has left an estimated 400,000 tons of rice stranded at ports or at sea. Sri Jagdamba Agrico is one of the leading rice exporters in India, selling over $100 million worth of basmati annually.
5: हमारा मुख्य खरीदार अगर बासमती की बात करता हूँ मैं पर्टिकुलर की बासमती की ईरान इराक और सऊदी अरेबिया टोटल हिंदुस्तान से 6 मिलियन टन लास्ट ईयर हमने बासमती का एक्सपोर्ट किया था जो कि एक रिकॉर्ड बासमती का एक्सपोर्ट था जिसमें से 3 मिलियन इन तीन देशों के लिए गया था और बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा तकरीबन 1.5 लाख टन चावल बासमती चावल जो कि रास्ते में बंदरगाहों पर अटका पड़ा है और इतने चावल हमारा हिंदुस्तान की बंदरगाहों पर अटक गया था इंदर जो हिंदुस्तान की बंदरगाहों पे चावल अटका वो भारत सरकार ने हमारी एसोसिएशन के साथ मिलके उन्होंने उस पर कदम उठाए और पूरा हमारा जितने भी एक्सपोर्टर थे उनकी मदद की हमारे ऊपर जितना पोर्ट का डैमेज था वो सारा उन्होंने हमारा माफ़ कर दिया और हमने वो चावल पूरा का पूरा बैक टू टाउन अपने वेयर हाउसेज के अंदर लेकर वापस आ गए
2: व्हेन समथिंग हैपेंस इन इंडिया on the agricultural front, because we are the largest consumer as well as a producer also. So the world awakes. So India will import, prices will keep on increasing. So India has been, you know, benevolent to all the countries which are in its neighborhood, whether it is Nepal, Bhutan, Bangladesh, and always provided, you know, food security support, even during COVID-19 times also. If this kind of, you know, blockage remains, our perishables will be highly affected, basically, you know, shrimps, fruits and vegetables. If the supplies from India, they don't reach to the countries where they require, so definitely it will have a ripple effect there in terms of, you know, increasing the prices, in less affordability to food to their populations.
0: Then there is also the cost of shipping. Fuel price and insurance premium hikes add to the expense.
5: जहाँ पर $600 पर कंटेनर का फ्रेट था वो आज $3,000 पर कंटेनर का फ्रेट आ गया जो कि 5 गुना वृद्धि हो गई है जिसका प्राइस के ऊपर हमारे लॉस प्रॉफिट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी ट्रेड के ऊपर आया है खरीददार चावल की बासमती चावल की डिमांड नियंत्रण बनी हुई है पर उसका जाने का रास्ता प्रॉपर नहीं है इसलिए हमें बेचने में भी डर लगता है क्योंकि वार के चांसेस की वजह से इंश्योरेंस भी इसका कवर नहीं मिलता है
0: Looking ahead, the worst could still be yet to come. A super El Nino is forecasted for this year, which will put food supply under more pressure. El Nino is a weather pattern that brings drier and warmer weather to parts of the world.
4: So El Nino may result in droughts or long dry spells in the middle of, let's say, rice growing season that's about to start. If that happens, the production may go down. If it happens in Punjab, Haryana, Western UP, where we have irrigation, farmers will irrigate to make up for rainfall shortage. If it happens in, let's say, Jharkhand, or parts of peninsular India where we don't have irrigation, then it'll have bigger effect.
6: The risk of like an outright ban or protectionist measure starts to increase once you start seeing prices pick up substantially. So that is a risk we need to monitor, perhaps for next year. But right now, I think that risk is low.
0: Still, it's not just food prices going up. Cooking gas now costs about 7% more per cylinder in India. And for poorer families, all these small increases quickly add up.
7: कमाते कोटी में कमाती हैं, हमारे बेटा है, पोती है, और मैं हूँ। बेटी का अभी शादी कर दिया, तीन जने हैं परिवार में, महीना का 12,000 है हमारे पोती वो सब्जी बेचती है और साइकिल भी बनाती है देखो मिल जाते हैं और उसको तो इतना नहीं है जो बहुत सारे साइकिल आ जाते नहीं एक दो को भी आ जाते हैं
0: Salmati's family now survives on 2 meals a day.
7: मैंने बंद कर दिया, सिलेंडर बंद कर दिया, लकड़ियाँ से खाना बनती है। इतना मुसीबत है, इतना मुसीबत कुछ कही ना जाए, बहुत मुसीबत है। सिलेंडर भूखे रह जाओ, इतना परेशान है सिलेंडर के लिए, कुछ कही ना जाए, बहुत दुखी है।
4: हाफ ऑफ एवरेज इंडियन हाउस होल्ड स्पेंड्स हाफ ऑफ इट्स बजट ऑन फूड, क्लोज टू हाफ, 47-48%. So if food prices rise by even a little bit, the squeeze will be felt by households. They'll cut back. You can cut back on food only so much. They'll cut back on other expenses, right? Health expenses, education expenses, etc. So if the war persists, it can have long-term effects that would be difficult to reverse on health, nutrition, and other human welfare markers.
0: We've seen how the Iran war is affecting farms and food crops. But out at sea, fishermen are facing just as much pressure.

0: What makes Rajasthan attractive for solar power is straightforward. Abundant land and some of the highest solar radiation in India. But as solar farms expand closer to villages, the land becomes a point of negotiation. Developers approach landowners, often through brokers, offering either a full buyout or a 30-year lease. Kishanji says he's been approached before. He refused to sell or lease them. But his decision to hold on to his land is not only for what it means to him, it is economic as well.
1: मेरी फसल होती है बीघे में मतलब 50,000 की तो 40 बीघा जमीन है 20 लाख की मेरी फसल होती है इसमें
2: बाजार से गिरा
1: यह देता है साल का 6 लाख रुपया तो मैं क्यों दूं इसको दूसरी बात मैं आज बेचूं मेरी जमीन है तो रेट चल रहा है 3 लाख रुपया बीघे का यहां रेट चल रहा है तो भाई रकम मान लो मैं उठा के 1 करोड़ 20 लाख रुपया बनता है मेरी खेत का इसका मेरो करोड़ रुपया रो धन में 6 लाख में उसको आदिन क्यों
0: As developers acquire more land in the villages, they also need access routes, roads that cut through villages and farmland.
1: ये रास्ता है तो अपनी रणी तक ही है ये रास्ता बंद कर दिया आ गया हूं रास्ता बंद कर दिया तो खेत जाने का रास्ता ही नहीं रहेगा तो जाएगा कहां से मैं इसलिए नहीं दिया ये देता है 15,625 रुपया बीघे का साल का किराया देता है इस जमीन का
0: As more land is acquired, the remaining farmers begin to feel the pressure to give up theirs.
1: धीरे-धीरे हमारी जमीन है नहीं जो कि सारी लेने की कोशिश करता है मान लो कहीं ने ठगा के कहीं ने डरा के कहीं ने धमका के मान लो ऐसे करके सारा की जमीन लेनी चाहता है अब ये सिर्फ मारा एक खेत बचा है मान लो
0: Raman Lal Chowdhury is Kishanji's nephew and neighbor. Unlike his uncle, he agreed to lease his 6-acre land to a solar developer.
3: ये मेरी जमीन है, मेरे दादा की जमीन थी। कृष्णा राम के पास पड़ोसी हूँ मैं ताऊ का लड़का हूँ। ये कंपनी वाला आया, हमारे को कृष्णा राम ने बहुत मना करा था। मेरे को बोला काम दे देंगे मैं, आपको नौकरी दे देंगे तीन जनों को। नौकरी नहीं दी, प्लांट में काम ही नहीं दिया।
0: Raman took the deal of leasing the land for about $160 a year. It is far less than what a farming family of five might spend in a month. His current income is also significantly lower than what the land once yielded.
4: On the ground, we have been seeing the local youth get quick money. By giving their land on lease or selling their land within 3-4 years all gone and now they're putting barbed wire on the fencing
0: fences on Raman's land too went up
3: ab andar pag nahi dene deta hai ye dani hai hamari dani padi hai ye Krishna Ram ki baat maan lete to nahi dene to sahi rehte
0: looking back Raman says he might have been better off continuing to farm

0: But even as solar development expands, not all nearby villages have access to electricity. At night, Bhagirath, one of Kishanji's brothers, returns to a house that still has no grid electricity. While transmission lines may run nearby, extending power to scattered desert settlements has been a challenge.
1: चारों तरफ सोलर प्लांट लगा हुआ है, घर में लाइट नहीं है। वो कोई छोटी मोटी लाइट बैटरी बूटी से उसे काम चलाते हैं और चारों तरफ सोलर की लाइट है। हमारी लाइट डानी में नहीं, मकान में लाइट।
0: His family relies on a small battery-powered light from a portable solar panel, enough only for basic needs.
1: नहीं है लाइट, वजह से हमारे फसल नहीं ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। लाइट होती तो फसल ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं।
0: For families like Bhagirath's, the benefits of mass solar farm expansion that's happening in his very own village remain out of reach.

0: In Norang Desar village, another challenge shapes daily life: water. Santosh and Suraibane begin the day by walking more than 2 kilometers to fetch water for their families and livestock.
1: हमारे पानी की बहुत दिक्कत आ रही है हमारे पास में गांव के पास में पानी कभी कभी मिलता भी नहीं है
2: दूर जाके लाना पड़ता है लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर जाके पैदल जाके लाना पड़ता है
0: In many drought prone parts of India water is still delivered by tanker trucks a temporary lifeline for villagers when local supplies run dry
1: हमारे टैंकर से मंगवा रहे हैं और टैंकर 5-7 दिन नहीं आ रहा है गर्मी में तो बहुत ही सारा ऊंट और पशु है वो भी तीसरा रहता है
0: With the arrival of solar farms, that limited water supply is now shared. Panels need to be cleaned regularly, especially in the dusty desert.
2: हमारे यहाँ एक समस्या बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ सोलर प्लांट होने के कारण हमारे यहाँ टैंकर है वहाँ चले जाते हैं यहाँ पर नहीं आते हैं तो ये बहुत बड़ी आपत्ति आ रही है हमारे लिए कि पानी यहाँ नहीं पहुँच रहा है हमारे लिए
0: In the Thar Desert, where water has always been scarce, the demand for solar is placing new pressure on an already limited resource.